एक्स का एफ एम का वह नेखे का वह फिर तक मिनट है तो ये कौन कौन गुस्से पा के 20 तक मिनट है मुंह कौन वाले मुंह हो चित्त वंगु सा गुस्से से का के रातो अ गुस्से दे कौन वाले मुंह हो चित्त बा कौन दे का वह करे में के सेफ्टी के कन्हू रुसे से वह जी के मित्र चौंग वाले मुंह हम कोई सा गुस्से का हो कौन का के वाले मुंह करूं से हम लोग में पंगों में तेरे नशे लगे चुकुना आते नशे उनका नुवज़ से आकांग तुतु गे कहीं में मुकाशे लगे उलू कहीं में आगे सिंह को जिंग में देख उलू मासे लगे कहीं से कहते ना कहीं हाथ लगे सेफ्टी कहीं से उन कम उसे उठा का मासे लगे गेज किया अचुकुना ओ आउज़ेला आ खास बोतल ओ कम वो डाइट उन्होंने ता कहने वजह से मासे लगे सेफ्टी को उन कम को सेव वो अच्छे मतलब चोंगा बोला हम कोई सा कोई जिसे क्या मतलब चोंगा के मंगा मासो तंदुरुत उंगा बोला